0: आप ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: खामोश रात है, साहिलों का साथ है, कोई दिल के करीब तो किसी के दिल पास है। सफर तन्हा है फिर भी दिल में कई जज्बात हैं। कभी खुशियों की महफिल, कभी गम की बरसात है। यही है जिंदगी की हकीकत कि कहीं महकती सुबह तो कहीं अंधेरी रात है। वेल दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि कभी भी जिंदगी एक सी नहीं रहती। उतार चढ़ाव, दुख सुख आते ही रहते हैं, चाहे हम इनसे कितना भी भागने की कोशिश करें, 'cause they are the part and parcel of our existence।

0: सुनो साडे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।
1: बाकी जो मर्जी हुंदा हो जावे वीरे पर गाल नहीं कढ़नी।
2: कई बार ढेर सारी बातें दबी रहती हैं जहन में, कई सारे सवाल जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के पास हैं, उस खास इंसान के पास। पर होता यूं है कि कई बार हालात, कई बार जज्बात, बहुत कुछ कहना चाहते हैं हम, पर ये दोनों चीजें कहने नहीं देती। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे उन्हें, मगर इस जुबान ने कहने ना दिया। कभी वक्त की खामोशी में खामोश रहे हम, तो कभी उनकी खामोशी ने कहने ना दिया।

ना हौसला ना इरादे बदल रहे हैं लोग, थके थके से हैं फिर भी चल रहे हैं लोग, ना वफा ना किरदार ना उसूल कोई, न जाने कौन से सांचे में ढल रहे हैं लोग। वाकई में इन चंद लाइंस में सच्चाई है। द हार्श रियलिटी ऑफ टुडेज सिनेरियो इज हिडन। अंदर बहुत कुछ दफन है पर बाहर नजर नहीं आता, क्योंकि मुखौटे जो लगाकर घूमते हैं हम लोग। चले बातें तो बहुत सी होती रहेंगी, एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक पहले।

जिंदगी को सही तरीके से जीना है, जो सलीका है सबका इंडिविजुअल होता है, पर मैं ये मानती हूँ कि कभी गुजरे हुए वक्त को उलट कर देखो, आगे बढ़ना है तो पीछे पलट कर न देखो। खूबसूरत सी नजर आती है ये दुनिया यूं तो, देखना है तो जरा नकाब उलट कर देखो। एंड फाइनली अपने वादों के अल्फाजों को न भूलो कभी, और कहीं भूल जाने का अगर खौफ है तो उन्हें रट कर देखो।

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा वही कागज उसे, हमने लिखा कुछ भी नहीं, इस शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, आंखों से ही की बातें बहुत, मुंह से कहा कुछ भी नहीं।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: अपने आप को जब तलाशना शुरू करते हैं तो खुद को ढूंढते ढूंढते कई बार हम पहुंच जाते हैं आईने के पास। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है कि खुदा है मुझ में। अब तो ले देकर वही शख्स बचा है मुझको मुझसे जुदा करके जो छिपा है मुझ में। आईना ये तो बताता है कि कौन हूँ मैं, पर इस बात पे खामोश है कि क्या खास है मुझ में।

जिंदगी थमने का नहीं, लड़ने का बढ़ने का नाम है, और किसी के आने या जाने से ये कभी रुकती नहीं। जिंदगी ने कहा मुस्कुराते हुए, मिल तो जाओ कभी आते जाते हुए, वो भी शायद पशेमा था मेरी तरह, मुड़ के देखा तो था शायद उसने जाते हुए। आदमी की बहुत सी है मजबूरियां, ये कहा था उसने जाते हुए। अपने वादे पे जिनको बहुत नाज था, उनको देखा है हमने बहाने बनाते हुए। हम रुके थोड़ा, हम भी मंजिल की तरफ बढ़ते गए, डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए।

इससे पहले कि कुछ समझ आए, वक्त गुजर जाता है, जिंदगी बीत जाती है और हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि पता ही नहीं चला। जीवन एक धारा सा कब बह निकला पता ही नहीं चला। क्या लिखूं मैं इन पन्नों पर जिन पर स्याही नहीं टिकती। मेरे कलम ने कब छोड़ा लिखना। दिन गुजरे रातें ढलती रही। मेरी सुबहों ने मेरी शामों से कब नाता तोड़ा पता ही नहीं चला। निराश नहीं जिंदगी से मैं भी, हाँ हैरान जरूर हूँ। कौन था मेरे साथ, किसने था मुझको मोड़ा पता ही नहीं चला।